6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: यता त डरे रिसाए त गोलेनन खै
1: खै यतु करलाण्डन न नजाने के गर्छ
2: मुहार रियाली छ क्या
3: हे के भनम खै